पर सितावे हैं। मैं वारवेर क्रोम। We welcome you, Holy Spirit. मैं प्रश्न अंगल के तेवर। मैं अभिषेक अंगल के तेवर। अंगल नारतिंग है।